नमस्कार, FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आज दिन है सोमवार, सक संवत 1948, वैशाखा महीने की आज 21वीं तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 मई महीने की आज 11वीं तारीख है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं मीना स्वागत करती हूँ आज की पहली सभा में।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में

0: लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही समय में यानी कि सुबह 6:10 पर आप आनंद ले पाएंगे भक्ति गीतों का। सुबह 6:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम महिलाओं पर केंद्रित। सुबह 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

सुबह 7:05 पर आपको आज के दिन की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सुबह 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का।

सुबह 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे सुबह 8:15 पर। 8:30 पर आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज। सुबह 8:40 पर आप आनंद ले पाएंगे कार्यक्रम सुरों की रंगोली का। पुअर आंचलिक बातोरी रिले किए जाएंगे सुबह 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

सुबह 9:15 पर स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले आपको सुनवाएंगे खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत खेलमा भक्ति गीत ललरम सियामी खेलमा और उनके साथियों की आवाज में। सुबह 9:25 पर रांगखोल कार्यक्रम के अंतर्गत रांगखोल लोकगीत आप सुन पाएंगे स्वांथोई बॉय रांगखोल और उनके साथियों की आवाज में। जयंतिया कार्यक्रम के तहत जयंतिया भक्ति गीत आप सुन पाएंगे सुबह 9:35 पर इबोर बास्तिंग लाक्यांग और उनके साथियों की आवाज में। सुबह 9:45 पर ब्याते कार्यक्रम के तहत ब्याते भक्ति गीत आप सुन पाएंगे रेमजरमोई दारने और उनके साथियों की आवाज में।

सुबह 10 बजे से आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का शाम के 5 बजे तक। लेकिन उसी बीच आप सुन पाएंगे दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार, दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार और शाम 4 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम को, सुनते हैं आस्था से भरे कुछ मधुर भक्ति गीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे भक्ति गीतों का। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए अब आरंभ करते हैं महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम, जिसमें आज सुनते हैं एक खास पेशकश।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग एफ एम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती और मैं लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम।

0: प्रोग्राम जो हर नारी के लिए है, नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं 1 मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 1 मिनट के वुमेन टाइम के साथ ये कार्यक्रम।
1: नमस्कार, मेरा नाम जोयिस जया रौनियार है। मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। मैं अभी BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे लिखना और नृत्य करना बेहद पसंद है। मेरे अब तक 4 किताब प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे ढेरों सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। मैं देश विदेश के ढेरों पत्रिकाओं में मेरे कविता को भी स्थान दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को जीने के लिए हमें इससे सीखते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। थैंक यू।
0: दोस्तों, वुमेन टाइम के बाद आज हमारे वुमेन प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित है दिबाराय महिला समिति की प्रेसिडेंट एल्बिना थाउसन जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
2: थैंक यू। नमस्ते जुठाई।
0: जी, आप अपने बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए हमें।
2: ठीक है, मैं पहले हाफलॉन्ग में जन्म हुआ है मेरा, दिबराय में। मेरा स्कूलिंग सेंट एग्नेस कॉन्वेंट में हुआ है
0: जी
2: और उसके बाद आफ्टर मैट्रिकुलेशन हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री लेकर मैंने मास्टर्स की है। तो उसके बाद मेरा नौकरी हो गई, फिर उसके बाद ये दिबराय महिला समिति में तो मैं बाद में आई हूँ। एक्चुअली यहाँ दिबराय महिला समिति के मेंबर्स जो होते हैं वो एवरी शादीशुदा औरत होते हैं दिबराय के।
0: जी
2: शादी के बाद ऑटोमेटिकली वो दिबराय महिला समिति के मेंबर्स हो जाते हैं।
0: जी
2: और उसी तरह मैं तो मेरा शादी तो बाद में हुई, इसलिए उसके बाद मैं मेंबर्स हुई। और उसके बाद 2023 में मुझे सेलेक्ट किया फॉर प्रेसिडेंट। हमारे 3 ईयर्स का टर्म होता है दिबराय महिला समिति में, तो वो एवरी 3 ईयर्स में हमारा सिलेक्शन होता है, वोटिंग होता है मेंबर्स के बीच। तो उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बनी 2023 में। तो हमारे टर्म यही लास्ट ईयर है, अभी अप्रैल में ख़त्म होने वाला है।
0: जी, ये एक टर्म अनुसार होता है ना।
2: हाँ, टर्म्स होता है, 3 ईयर्स का टर्म्स होता है। उसमें
0: जी
2: हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटररी, ऐसे अलग अलग का। हमारे यूनियन बॉडी होते हैं
0: जी
2: उसमें अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं उसके। और इसके साथ ही हमारे ब्रांच सेल्स अलग होता है। एक तो रिंकू डामसा है, वो सुना ही होगा हमारा रिंकू डामसा,
0: बिल्कुल
2: वो कल्चरल ट्रेडिशन का स्कूल है। उसमें हम डांस सिखाते हैं, डांस के साथ साथ हमारा वो ढोल बजाना, खराम, हम लोग खराम बोलते हैं,
0: जी
2: खराम बजाना और फ्लूट बजाना ये भी सिखाते हैं वहाँ। और यही रिंकू डामसा है। और इसके अलावा हमारे स्कूल अलग अलग स्कूल्स है। और दूसरा है माहोनी ग्राउ, माहोनी ग्राउ मतलब मदर टंग,
0: जी
2: इसको भी हम लोग सिखाते हैं एवरी संडे। इसमें हम लोग डिमासा में डिमासा का रिडल्स, पोएम्स, फोक सॉन्ग्स, फोक स्टोरीज ये सब सिखाते हैं वो संडेज को, एवरी संडे को।
0: जी
2: और उसके इंस्ट्रक्टर्स जो है टीचर्स वो पेड नहीं है, वो वॉलंटरली है। तो
0: जी
2: हमारे मेंबर्स के बीच से ही होते हैं वो लोग, दे आर नॉट पेड, वो लोग फ्री में करते हैं ये।
0: जी जी
2: तो रिंकू डामसा को तो आप लोग पता ही
0: जी
2: होगा,
0: बिल्कुल
2: पता चल गया होगा, क्योंकि उनका दूसरा प्रेसिडेंट होता है, दूसरा सेक्रेटरी होता है, तो वो लोग चलाते हैं उसके हिसाब से। और वो फीस बेस्ड होता है। और हमारे टेलरिंग स्कूल भी है, टेलरिंग नीटिंग बहुत पहले से थे, मतलब जब से खुला है हमारा महिला समिति 1971 के नवंबर में खुला था ये, 18 नवंबर 1971। तो तब से ही वीविंग स्कूल तो था,
0: जी
2: बट बीच बीच में थोड़ा सा डिसफंक्शनल हो गया है, लेकिन फिर हम लोग ने बहुत जल्द ही उसको हम लोग फंक्शनल कर दिया। और अभी फ़िलहाल है उसको हम लोग रिडीमा डाउशलिंखो स्कूल बोलते हैं।
0: जी
2: तो उसमें वो भी वन टाइम फीस का है, फीस लेते हैं हम। और इंस्ट्रक्टर्स, 2 इंस्ट्रक्टर्स है, उसको हम लोग सैलरी देते हैं। और ये सब सैलरीज तो फीस से तो नहीं।

0: होता हम लोग फीस, हम लोग का मेंबरशिप फीस होता है, दिबारे महिला समिति का मेंबर्स का फीस होता है एवरी मंथ, मिनिमल है, बहुत कम है, तो उसी से ही हम लोग चलाते हैं ये स्कूल भी, फीस देते हैं। और ऐसे ग्रांट इन एक तो 1 ईयर, एक साल में एक बार तो मिलते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिलता है और ऑटोनोमस काउंसिल से भी मिलता है
1: जी
0: एक बार, तो ये सब से हम लोग चलाते हैं। और इसके अलावा हम लोग का एक्टिविटीज़ के बारे में अगर कहूँ तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डिबरा महिला समिति का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो मोस्टली बेसिकली फॉर वुमेन है, औरत
1: जी
0: के लिए,
1: जी
0: फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द वुमेन, यही हम लोग का, चिल्ड्रन एंड वुमेन। और लेकिन हम लोग का ज्यूरिसडिक्शन डिबराई है,
1: जी
0: डिबराई ही है, मतलब इसका बेनिफिशियरीज जो होगा, जो हम लोग मदद कर सकेगा वो डिबराई ही है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम लोग का एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, वो हम लोग बाहर भी जा सकते हैं फ्रॉम डिबराई महिला समिति, हम लोग गांव गांव में जाके हम लोग अवेयर करते हैं टॉपिक्स रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक हेल्थ और ड्रग अब्यूज़, क्लीनलीनेस, ट्रेडिशन, प्रिजर्विंग ट्रेडिशन एंड
1: जी।
0: कल्चर, हाँ ये सब हम लोग अवेयर करते हैं गाँव गाँव में जाके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग एजुकेशन में हम लोग स्ट्रेस देते हैं,
1: जी।
0: और वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही, सभी का तो नौकरी तो नहीं होगा, एवरीबॉडी इज़ नॉट एजुकेटेड तो नहीं होते हैं, इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी हम लोग स्ट्रेस देते हैं।
1: जी, आपने बताया कि
0: हाँ
1: टेलरिंग ट्रेनिंग जो होता है आपके यहाँ
0: हाँ
1: पे,
0: जी,
1: जी वो नीटिंग टेलरिंग, वो क्या हर साल होता है या कुछ मंथली बेस्ड है?
0: वो 6 मंथ्स का कोर्स होता है,
1: जी
0: हाँ 6 मंथ्स ख़त्म होते ही नेक्स्ट टर्म आ जाता है, दैट मीन्स 2 बार होता साल में, ऐसे होता है। लेकिन फिलहाल नीटिंग नहीं है, वो
1: जी
0: सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से देते हैं, ये स्टाइपेंड भी देते हैं स्टूडेंट्स को, मंथली 500 देते हैं,
1: जी
0: और एट द एंड ऑफ द कोर्स पास होने के बाद मशीन देते हैं। लेकिन अभी नीटिंग बंद है, टेलरिंग चालू है,
1: जी
0: तो कुछ दिन पहले ही जो पास्ड आउट हुआ है टेलरिंग में, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी
1: जी
0: दो अलग अलग है, 10 स्टूडेंट्स इन एम्ब्रॉयडरी, 10 इन टेलरिंग,
1: जी
0: तो इन लोगों को मशीन भी बांटा गया है थोड़ी कुछ दिन पहले, ऐसे होते हैं। तो अभी नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट हुआ नहीं, वो नोटिफिकेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आएंगे, वो
1: जी
0: उसके बाद हम लोग नोटिफाई करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, तो अप्लाई करते हैं।
1: जी आपने बताया कि 10 स्टूडेंट्स होते हैं उसमें।
0: हाँ,
1: जी, तो वो इतने सारे स्टूडेंट्स में आप लोग क्या सेलेक्ट करते हैं?
0: फर्स्ट कम फर्स्ट,
1: जी
0: फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, जितना फॉर्म मिलते हैं हम लोग कि जितना फॉर्म्स तो दे देते हैं ऑफिस से, उतना जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में होता है।
1: ऑफलाइन होता है वो।
0: हाँ
1: जी, जितने भी 10 स्टूडेंट होते हैं उन 10 लोगों को ही मिलता है।
0: हाँ
1: जी
0: दस मतलब टोटली 20 है,
1: जी अलग
0: एम्ब्रॉयडरी
1: अलग।
0: में 10, टेलरिंग में 10 20,
1: जी
0: दो इंस्ट्रक्टर्स है।
1: जी वहाँ पे सिखाने के
0: हाँ
1: लिए।
0: हाँ सिखाने के लिए।
1: जी जी आपने बताया कि आप लोग के जैसे महिला समिति है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही
0: हाँ
1: बेस्ड टॉपिक्स पे चीज़ें लेकर आती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है?
0: वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि वुमेन तो हम लोग इक्वलिटी चाहते हैं,
1: जी
0: इक्वलिटी विद मैन, क्यों हम लोग पीछे हटे। तो अगर मैन मर्द कमा सकते हैं तो वुमेन भी कमाना चाहिए, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कमाते हैं कुछ फाइनेंशियली खुद खड़ा हो सकता है, तब तो आवाज़ भी उठा सकता है,
1: जी
0: हम लोग के ऊपर कोई इनजस्टिस नहीं करेगा, दे विल नॉट टॉर्चर अस, और हम लोग पर दबाव नहीं करेगा कि ये करो वो करो, पैसा नहीं देगा ऐसे कुछ, मतलब दुनिया में तो बुरा आदमी भी होता है ना, सबको तो नहीं बोल रहा, तो अगर पैसा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उसका औरत का आवाज़ भी उठा सकता है, जस्टिस के लिए भी फाइट कर सकते हैं, दे विल
1: जी जी
0: स्ट्रांग होगा उसी, और यही कारण नहीं, कारण तो बहुत है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, क्योंकि नेचुरल चीज़ को तो हम लोग रोक नहीं सकता,
1: बिल्कुल नहीं।
0: कभी विडो भी हो जाता है।

0: किसी कोई बीमार भी हो जाता। तो पैसा तो इट्स अ बेसिक नीड है ना, सबके लिए तो ज़रूरी है। फॉर हेल्थ, बच्चों का एडुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ के लिए पैसा चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा है ये बात। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जॉब मिल गई थी
0: जी
1: जी, आपने आपको आफ्टर ग्रेजुएशन ही मिल गई थी या आपने और भी कुछ किया था?
0: ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ही जॉब मिल गई। मैं एक्चुअली मैं फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं टीचर थी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में।
1: जी
0: उसके बाद मैं एपीएससी कंबाइंड एग्ज़ाम दी है, उसमें से मैं मुझे सेलेक्ट हो गई मैं।
1: जी ये
0: तो
1: तो बहुत ही अच्छी बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो उस अभी तो मैं ये एनजीओ है, ये ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लोग को ऑफिस करना तो ज़रूरी नहीं है, इसलिए साथ ही साथ मैं काम कर लेती हूँ, ऑफिस के साथ ही कर लेती हूँ।
1: जी
0: टाइम तो बहुत मतलब एडजस्ट करना पड़ता है,
1: जी
0: और हमारे ये समिति का काम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीडेज में ही करते हैं, सेकेंड सैटरडेज, गवर्नमेंट हॉलीडेज, संडेज, ऐसे में ही हम लोग प्रोग्राम रखते हैं। तो टाइम तो बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है, ऑफिस का काम, घर का काम, फिर ये समिति का काम।
1: जी आप सब कुछ मैनेज कैसे करती है?
0: टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टाइम हम लोग रूटीन बनाना पड़ता है कि दिस वीक, ये हफ्ता हम लोग क्या करें, हम लोग का काम क्या होना चाहिए। तो मैं रूटीन बना लेती हूँ, लाइक ये हॉलिडे आ रहा है, इस हॉलिडे में हम मीटिंग रख लेते हैं, समिति मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है कभी कभी, कभी कभी अर्जेंट मीटिंग भी हो जाता है, गवर्नमेंट से जो मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं
1: जी
0: पार्टिसिपेशन के लिए, इस सब का भी हम लोग डिस्कस करना पड़ता। तो उसके लिए हम लोग बना लेते हैं, एक हफ्ता में हम लोग रूटीन बना लेते हैं, हॉलीडेज में बैठते हैं हम लोग, तो इसी तरह मैनेज करते हैं। रूटीन इज़ द मेन थिंग,
1: जी बिल्कुल
0: टाइमिंग, टाइम रखना पड़ता है।
1: जी। आपने और एक बात बताई कि महिला समिति से एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़ोरदार दिया
0: हाँ
1: जाता है,
0: हाँ
1: तो एजुकेशन वुमेन के लिए कितना हेल्पफुल रहता है?
0: हाँ जी एडुकेशन तो अभी तो इन दिस मॉडर्न ज़माने में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर एवरी वन, वुमेन, मैन, सबके लिए। क्योंकि हम लोग अगर अपने पैरों से खड़ा होना है तो फर्स्ट थिंग आता है एडुकेशन, हेल्थ के लिए हो एडुकेशन ही आता है, तो लाइवलीहुड के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसके लिए तो एडुकेशन ही इम्पोर्टेंट है मैं समझती हूँ।
1: बिल्कुल
0: इसलिए गांव-गांव में भी हम लोग अवेयर करते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, कुछ तो बनना है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है तभी भी एडुकेशन इम्पोर्टेंट है,
1: बिल्कुल
0: यही। हाँ हम लोग
1: आपने जो बताया कि आप गांव गांव में जाकर आप लोग करते, तो ये हाफलोंग के हर गांव में ही आप लोग गए हैं या और भी बाहर
0: नहीं,
1: भी?
0: थोड़ा नज़दीक, हाँ बाहर में भी जाती हूँ, डिमासो के बीच
1: जी।
0: अंदर, जैसे कि हम लोग सेमखोर भी गए हैं 2023 में शायद। हाँ सेमखोर भी गए हैं हम लोग, कुछ मतलब रिलीफ मटेरियल्स भी लेके गए हैं हम लोग, ऐसे करते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो ट्रैक, तो सेमखोर में समझाना भी मुश्किल होता है,
1: जी
0: लेकिन हम लोग ने बहुत कोशिश की उन लोग को एडुकेशन में स्ट्रेस देने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बहुत ज़्यादा, और हेल्थ में हम लोग के बीच में जो हेल्थ एडुकेटर्स भी है, हेल्थ वर्कर्स भी है हमारे बीच, इसलिए हम लोग उन लोग समझाते हैं, इम्यूनाइज करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये सब हम लोग वहाँ अवेयर करने में बहुत स्ट्रेस दिए हम लोग, ज़्यादा इंटीरियर विलेजेस में ज़्यादा दिए हैं।
1: जी
0: यहाँ टाउन हाफलोंग, ग्रेटर हाफलोंग के बीच भी हम लोग गए हैं, कितने गांव्स में हम लोग गए हैं, उन लोग को भी अच्छा लगता है ऐसे जाके, हम लोग बातचीत करता
1: जी जी
0: अच्छा लगता है। तो ट्रेडिशन के बारे में भी हम लोग प्रिजर्व करना है, और अगर कल्चर ट्रेडिशन नहीं तो हमारा पहचान ही नहीं है, हमारा
1: बिल्कुल
0: रूट, हम लोग का सिविलाइजेशन जो बहुत पहले ही हुआ था, हम लोग का सिविलाइज होने का एक प्रूफ तो हम लोग का ट्रेडिशन है, डांस
1: बिल्कुल
0: है, कल्चर है, तो उसको तो जिंदा रखना है, इसलिए वो भी हम लोग का स्ट्रेस, हम लोग स्ट्रेस देते हैं उसमें भी। और हैंडलूम
1: जी
0: जो वीविंग करता है औरत, ये तो हम लोग का औरत के लिए एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है पहले के लोग गांव में जो रहते हैं, उन लोग के लिए लाइवलीहुड के लिए ये बहुत अच्छा है
1: बिल्कुल
0: वीविंग करना, वो अच्छा मार्केट होता है आजकल, इसलिए ये भी हम लोग इसके बारे में भी

0: लोग अवेयर करते हैं, समझाते हैं लोगों को कि नहीं छोड़ना है, सीखना है वीविंग करना।
1: जी जी आपने बताया जैसे कि हैंडलूम ये सब करके
0: हाँ
1: भी
0: जी,
1: आप मार्केटिंग भी ये सब कर सकते
0: हाँ हाँ
1: हैं
0: जी,
1: जी। आपके ग्रुप में से कोई या आपने किसी को ऐसा हेल्पफुल आप लोगों की तरफ से हुआ है जहाँ पे आप लोगों ने मतलब इतना कि आप सीखो उसके बाद आप ये कर सकते हो ऐसा टाइप ने आपने
0: मदद
1: किया है?
0: मदद करना।
1: जी जी
0: हाँ, हम लोग गवर्नमेंट से भी हम लोग मदद मांगते हैं, तो उसी तरह हैंडलूम डिपार्टमेंट से भी हमारे रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर, हैंडलूम इंचार्ज जो है प्रबीता जौहरी, उन्होंने भी मदद की है, हम यान दी है तो डिस्ट्रीब्यूट किया है हम लोग ने, यान भी उनकी तरफ से थ्रू महिला समिति डिस्ट्रीब्यूट की है। और हम लोग, हाँ हम लोग बहुत कुछ सिखाते भी है कि अगर नौकरी नहीं मिला गवर्नमेंट नौकरी तो आप लोग को यही करना पड़ेगा, यही एक उपाय है, मार्केट में भी अच्छा प्राइस है कपड़े का, दिमासा कपड़े का अभी। हाँ ऐसे तो हम लोग अवेयर करते हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: देखा भी है कितने लोगों को वीविंग करके कुछ अपना फैमिली चलाते हैं, ऐसे भी देखा है हम लोगों ने।
1: जी जी बिल्कुल। आज के टाइम में आप ये मानेंगे कि पैसा कमाना इजी अगर आप चाहो तो हर चीज़ में ही, क्योंकि आप ऑनलाइन की तरफ से हो या हाथ के काम से कहे या
0: जी
1: बहुत सारी चीज़ें हैं। जी
0: हाँ, ये सब भी हम लोग करते हैं। हमारे कैंपेन के दौरान हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कुछ बोलते हैं, जैसे आपने कहा पार्लर और कुछ दूसरी दूसरी लाइन पे ऑनलाइन भी कमाते हैं आजकल,
1: जी
0: तो कंप्यूटर, जिन लोगों को कंप्यूटर्स आता है तो उन लोग के लिए भी कमाई हो सकता है, ये भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। हम लोग के कैंपेन के प्रोग्राम में
1: जी
0: हम
1: जी
0: लोग ये काउंसलिंग प्रोग्राम भी रखते हैं।
1: जी ये काउंसलिंग प्रोग्राम वगैरह साल में आता है या आफ्टर मेनी इयर्स?
0: हाँ नहीं, मैनी ईयर्स तो नहीं, हम लोग साल में एटलीस्ट हम लोग 3-4 प्रोग्राम्स रखते हैं हम लोग,
1: जी जी
0: ये कैंपेनिंग प्रोग्राम,
1: जी
0: कभी 3 कभी कभी 4। और इसके लिए हम लोग सोशल वेलफेयर से भी मदद मिलते हैं,
1: जी
0: लाइक उनके तरफ से एक बार तो होता है इन कोलेबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो उसमें हम लोग ड्रग एब्यूज़ और एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, ये इसमें ज़्यादा स्ट्रेस देता है हम लोग
1: जी
0: को।
1: जी जी जैसे बहुत सारे में ऐसा भी दिखाया गया है कि बच्चों से काम वगैरह भी हो जाता है, करवाते हैं लोग।
0: लेबर,
1: जी
0: हाँ
1: जी जी उसके अलावा वो पढ़ने के लिए ज़्यादा अवेयर करे, दैट्स बेटर। उसके लिए भी आप लोग कुछ करते हैं?
0: हाँ हम लोग कैंपेन में जो, तो हम लोग एजुकेशन को ही तो बोलते हैं ना कि स्कूल भेजो
1: हाँ
0: पढ़ाना है, काम तो सीखना भी है, अगर थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो बेसिक काम तो कुछ सबको सीखना ही है,
1: जी
0: इसलिए साइड बाय साइड काम मत कराओ ये तो नहीं बोलता हम, लेकिन घर का हाउस होल्ड काम जैसे थोड़ा खाना बना लेना, चाय बना लेना, ये तो हम लोग रोकता नहीं, ये तो चाइल्ड लेबर नहीं है, इसलिए वो हाउस होल्ड काम के लिए तो हम लोग जैसे वीविंग भी सीखना थोड़ा आफ्टर 15 ईयर्स 16 ईयर्स, ये सब तो हम लोग मना नहीं करते,
1: जी
0: पढ़ाई के साथ साथ ये सीख सकते हैं।
1: जी आप इतने टाइम से महिला समिति में हैं और आप काम भी कर रही है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक?
0: मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी कैंपेन्स करते हुए हम लोग बहुत लोगों से गांव के प्रॉब्लम्स का हम लोग देखने मिलता है, क्या उन लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, और जगह भी हम लोग को देखना मिलता है और समझ सकता है कि दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और हम लोग सब कुछ तो नहीं कर सकेगा उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन दूर करने के लिए तो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, तो हम लोग सेटिस्फेक्शन मिलता है,
1: जी जी
0: मिलता है कुछ अच्छा
1: जी
0: लगता है, उन लोग से मिलके बात करना अच्छा लगता है।
1: जी जी आपने बारे में भी बताया है और कितना बिजी शेड्यूल रहता है ये बताया आपने।
0: हाँ
1: आप
0: जी,
1: फ्री टाइम में क्या करती है?
0: फ्री टाइम मेरा मेरा हॉबी एक है गार्डनिंग, और म्यूज़िक भी मैं पसंद करती हूँ, म्यूज़िक
1: जी जी
0: सुनना पसंद करती हूँ, तो मैं गार्डनिंग करते करते मैं गाना बजा के गार्डनिंग करती हूँ छुट्टी में,
1: जी
0: हॉलीडेज में, मुझे अच्छा लगता है गार्डनिंग, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स थोड़ा थोड़ा बहुत, ज़्यादा
1: जी
0: नहीं, फूल्स बहुत पसंद है मुझे।
1: जी आपने बताया कि आपको गाना सुनकर गार्डनिंग करना काफ़ी पसंद है,
0: जी
1: आपको कौन से गाने काफ़ी पसंद है?
0: मैं तो हिंदी ही ज़्यादा सुनती हूँ, बॉलीवुड सुनती हूँ,
1: जी
0: पहले तो मैं एक टाइम में था गज़ल बहुत पसंद करती थी, पंकज उदास का गज़ल और जगजीत सिंह का गज़ल, लेकिन अगर अभी फेवरेट सॉन्ग कहूँ तो बहुत है
1: जी
0: बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत है।

0: जी
1: एक नहीं है, मैं बॉलीवुड ही सुनती हूँ
0: जी
1: ज्यादा।
0: आप क्या रेडियो में सुनती थी या पहले से फोन में ही सुनती हैं?
1: पहले मेरा स्कूल डेज से कॉलेज डेज में टेप रिकॉर्डर में सुनती हूँ,
0: जी
1: कैसेट्स जो होते हैं वो, वही पे सुनती हूँ मैं। दीदी घर में सुनती हूँ, अभी
0: जी
1: तो वो सब नहीं दिख रहा है, कैसेट डिस्क नहीं दिख रहा, अभी तो मोबाइल में सुनती हूँ।
0: जी जी आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो आप शेयर करना चाहो?
1: स्कूल जाना छोटा बहुत, जब बहुत छोटी थी तब तो अच्छा नहीं लगता था। पहले की बात ही बता देती
0: जी
1: हूँ,
0: जी
1: अर्ली डेज नर्सरी में जब थी, नर्सरी में मैं रोती थी बहुत, स्कूल नहीं जाती थी। तब मेरा बड़ा भाई, सबसे एल्डर्स ब्रदर बड़ा भाई,
0: जी
1: उन्होंने छोटा सा स्टिक लेके मारा मुझे
0: जी
1: पैर में। हाँ वो याद है मुझे, अभी तक याद है। और वो एक दिन मारने के बाद मैं स्कूल जाने लगी।
0: जी
1: मेरी माँ वो कहती थी, वो उसका दादा मारा ना, उसके बाद से ये रोता नहीं और चला गया स्कूल। इसलिए वो बात मुझे बहुत याद है। और अभी तो नहीं है वो, मेरा भाई नहीं है अभी तो, नहीं
0: जी
1: रहा, फिर भी ये बात मुझे अभी भी याद है। और हाँ अच्छा से अच्छा लगता है, कॉन्वेंट में था और वो दूर भी नहीं है मेरे घर से,
0: जी
1: इसलिए मुझे स्कूल जाना अच्छा है, अच्छा लगता है तब से। हाँ
0: जी
1: वही
0: वही
1: एक
0: कहते हैं
1: मेमोरी है।
0: ना, लोग चले जाते हैं पर यादें रह
1: हाँ
0: जाती हैं।
1: हाँ वही।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: जितने भी आपको आज सुन रहे हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, सबके लिए आपकी ओर से कोई मैसेज दीजिए।
1: अच्छा, मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी, हमारा तो काम ही है, महिला समिति का काम तो यही है कि अवेयर करना है फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, अपना आवाज उठाना। इसलिए हर औरत को अपना जस्टिस के लिए फाइट करना चाहिए, किसी के दबाव पे रहना नहीं चाहिए। खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, और साफ सुथरा जिंदगी जो हेल्थ के लिए हानिकारक है वो सब चीजों से दूर रख कर हमारे समाज को सुंदर रखने के लिए सभी औरत कैंपेन करना चाहिए। यही मेरी मैसेज होगी औरत
0: जी
1: के लिए।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे वुमेन के लिए आपने आवाज़ भी उठाई है और सबको एक मैसेज, आपने बहुत अच्छी मैसेज दी है और हमारे साथ इतनी देर तक आप जुड़ी रही, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू जुठाई।
0: जी आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम, जिसको प्रस्तुत किया था तृष्णा चक्रवर्ती ने। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए जाते जाते सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के

के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज का पोएम ऑफ द डे।
1: हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ पोएम, द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो हियर आई गो। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally late.

0: And leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the furze for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Thank you.
1: श्रोताओं, भी आपने सुने पूजा सिंह की जुबानी एक प्यारी सी कविता। आइए अब आज के दिन की विशेषताओं के बारे में बात करते हुए जानेंगे आज यानी 11 मई को घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, साथ ही आज के दिन जन्मे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम के साथ ही उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा।

शुरुआत करते हैं आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। मैसूर और ब्रिटेन के शासन टीपू सुल्तान के बीच शांति संधि का हस्ताक्षर 1784 में हुआ था। आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध के दौरान भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के अधिकारियों से दिल्ली पर 1857 में कब्जा कर लिया। आज के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण 1958 में किए थे। आज के दिन अनसंख्या घड़ी के मुताबिक 2000 में भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची थी। आज के दिन श्रोताओं, ये थी आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। कहानीकार और लेखक सादत हसन मंटू का जन्म 1912 में हुआ था। आज के दिन भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का जन्म वर्ष 1918 में हुआ था। आज के दिन हिंदी फिल्मों के अभिनेता सदाशिव अमरपुरकर का जन्म वर्ष 1950 में हुआ था। आज के दिन पंजाबी गायक अमरिंदर गिल का जन्म वर्ष 1976 में हुआ था। आज के दिन श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। अमेरिकी लेखक लुई बी पाउलर का निधन वर्ष 1994 में हुआ था। आज के दिन भोपाल सियासत की राजकुमारी एवं भारत की पहली महिला पायलट अविदा सुल्तान का निधन वर्ष 2002 में हुआ था। आज के दिन श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा।

श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 यानी यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक चल रहा है। यह सप्ताह 8 मई से शुरू होकर 12 मई तक चलेगा। ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक एक महत्वपूर्ण अंतरुक्ता पहल है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों से सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह सप्ताह यूनाइटेड नेशंस द्वारा आयोजित किया जाता है और दुनिया भर के देशों को एक साथ जोड़ता है। साल 2026 में यह अभियान विशेष रूप से सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन के संदेश पर केंद्रित है। सड़क दुर्घटनाएं आज के समय में एक बड़ी समस्या

बन चुकी है, जिसमें हर वर्ष लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। इस सप्ताह के दौरान सरकारों, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए प्रयास करते हैं। इस अभियान के अंतर्गत हेलमेट पहनने, सील्ड बेल्ट का उपयोग करने, गति सीमा का पालन करने और नशे में वाहन ना चलाने जैसे महत्वपूर्ण नियमों पर जोर देता है। साथ ही बच्चों और युवाओं को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता किया जाता है ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बने। अंत में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हमें यह याद दिलाता है कि सड़क पर सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम सभी यातायात नियमों का पालन करें तो हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं।

श्रोताओं, आज भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रतिष्ठित वकील और राजनेता असफ अली जी की जन्मतिथि है। इस दिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। असफ अली का जन्मदिन हमें उनके महान योगदान को याद करने का अवसर देता है। वे भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे एक कुशल वकील होने के साथ साथ एक सशक्त वकील भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलनों में सक्रिय भाग लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। असफ अली का योगदान केवल स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे देश के पहले राजनयिकों में से एक थे और अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। उनकी सोच हमेशा प्रगतिशील और राष्ट्रहित में रही है, जिससे उन्होंने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। उनका जीवन हमें देशभक्ति, साहस और समर्पण की प्रेरणा देता है। असफ अली जैसे महान व्यक्तित्व के आदर्शों को अपनाकर हमें एक बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देना और उनके विचारों को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्रोताओं, आज भारत की महान दार्शनिक जी कृष्णमूर्ति जी की जन्मतिथि है। इस दिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। जिड्डू कृष्णमूर्ति का जन्म आज ही के दिन 1895 में मडनपल्ले में हुआ था। उनके जन्म दिवस पर हम एक ऐसे महान दार्शनिक को याद करते हैं जिन्होंने जीवन, शिक्षा और आत्मज्ञान के बारे में गहराई से विचार प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बिना किसी डर, परंपरा या अंधविश्वास के स्वयं को समझना ही सच्चा ज्ञान होता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने अपने जीवन में किसी धर्म, संगठन या गुरु की आवश्यकता को नकारते हुए

कहा कि सत्य एक पाठहीन भूमि है। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से देखें और खुद को समझने की कोशिश करें। उनके अनुसार, जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझता, तब तक वो समाज या दुनिया में वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकता। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। आज के भगदौड़ भरे जीवन में, जहां लोग तनाव और भ्रम से घिरे रहते हैं, कृष्णमूर्ति जी के विचार हमें आत्मचिंतन और अंतरिक्त शांति की ओर ले जाता है। उनके जन्म दिवस पर हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने और एक बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेना चाहिए।

श्रोताओं, आज सदत हसन मंटो जी की जन्मतिथि है। सदत हसन मंटो उर्दू साहित्य की महान और बेबाक लेखक थे, जिनका जन्म 1912 को हुआ था। उनकी कहानियां समाज के कड़वे सच को बिना किसी डर के सामने लाती है। मंटो ने अपने लेखन में इंसानी भावनाओं, समाज की विडंबनाओं और खासकर बंटवारे के दर्द को बहुत गहराई से दिखाया है। उनकी भाषा सरल लेकिन असरदार थी, जो सीधे दिल को छू जाती थी। मंटो जी की रचनाओं में भारत का विभाजन का दर्द साफ झलकता था। उनकी प्रसिद्ध कहानियां जैसे टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त और खोल दो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने समाज के उन पहलुओं को उजागर किया जिन पर अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं। उनके जन्मतिथि पर मंटो को याद करते हुए ये समझते हैं कि सच्चाई को बेझिझक कहना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सदत हसन मंटो का लेखन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि वे हमें इंसानियत और सच्चाई का आईना दिखाते हैं।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे आज के दिन की विशेषताओं के बारे में। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। जाते जाते आइए आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: आइए अब सुनते हैं 2 मिनट्स कैप्सूल के अंतर्गत मेरी बात, जिसे प्रस्तुत करेंगी फ्रेशली न्यू में।
1: नमस्कार, मेरा नाम फ्रेशी न्यू में है और मैं HR ऑपरेशन में काम करती हूँ। आज मैं वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक में बात करना चाहती है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट मतलब सिर्फ लड़कियों का फ्रीडम देना नहीं, बल्कि उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज़ और डिसीजंस लेने का हक देना होता है। जब एक लड़की एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट होती है तो वो अपनी

0: के साथ साथ अपनी फैमिली को भी बेटर बना देती है। उसके डिसीजंस ज़्यादा स्ट्रांग और प्रैक्टिकल होते हैं, चाहे बात हेल्थ की हो, करियर की या फ्यूचर प्लानिंग की। आजकल वुमेन हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, जैसे जॉब्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, लीडरशिप, हर जगह अपना नाम बना रही है। बस उन्हें थोड़ा सपोर्ट और ट्रस्ट चाहिए होता है। जब सोसाइटी वुमेन को एम्पावर करती है तो क्राइम रेट कम होते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है और ओवरऑल ग्रोथ फास्ट होती है। बस इतना सा कहना चाहती हूँ। थैंक यू।
1: आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने। सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे रॉकी फिल्म से। इस गीत को गाया है आर डी बर्मन, किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

यादों की बारात फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं कूली नंबर 1 फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।

मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने

0: सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@ AI

0: या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष में एसबी त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगबा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112331 0112371717 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे समाचार प्रभात, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम को। सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

श्रोताओं, आइए अब आरंभ करते हैं कार्यक्रम सुरों की रंगोली। आज के सुरों की रंगोली कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रूप कुमार राठौर के कुछ बेहतरीन गाने।

दो मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा, मुझे इश्क किया।

श्रोताओं, सुरों की रंगोली कार्यक्रम के तहत आप आनंद ले रहे थे मशहूर गायक रूप कुमार राठौर के कुछ बेहतरीन गानों का। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से लिखे जाएंगे पुवार आंचलिक बातरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पुआर आंचलिक बातोरी, रिले किए गए थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत खेलमा भक्ति गीत, ललरम स्यामी खेलमा और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, ललरम स्वामी खेलमा और उनके साथियों के गाए खेलमा भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ ही समाप्त होता है खेलमा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं रांगखोल कार्यक्रम। सुनते हैं रांगखोल लोकगीत स्वान थॉय बॉय रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रंगखोल कार्यक्रम के तहत रंगखोल लोकगीत स्वंतभय रंगखोल और उनके साथियों के गाए। इसी के साथ ही समाप्त होता है रंगखोल कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए प्रारंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम। सुनते हैं जयंतिया भक्ति गीत एबरबस्टिंग लाक्यांग और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ ही जयंतिया गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं ब्याती कार्यक्रम, सुनते हैं ब्याती भक्ति गीत रमजार मोई दारने और उनके साथियों की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, रमजार मोई दारने और उनके साथियों की गाई इसी भक्ति गीत के साथ ही ब्याते गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। तब तक के लिए मुझे यानी मीना को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। बेचारा

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत

0: की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग।
1: पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
3: जी,
2: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
3: अरे बाप रे।
2: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
3: ये लो।
2: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
3: हीरोइनें भी हैं,
2: हीरोइनों के भी डेटे हैं। और ठहर गए।
3: अब
2: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
3: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
2: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो ये प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको। तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
3: कनेक्शन
2: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
3: अरे गजब।
2: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर में 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: இஸ் வெரி குட் டைரக்டர் பாஸ்தவ் இஸ் ஆர் ஆக்சர் டு இன்னொன்று முஜி யஷ் ஜோர் நே கஹா கி பாய் ஆப் அப் மே 5 மினிட் மில்னே ஆனா சாத்தா ஹூன் மே பாலி ஹில் ஷிஃப்ட் ஹோ சுகா தோ தபி உஸ்கோ ஆஃபீஸ் பனா லியா தா மேனே தோ மேனே கஹா மே பாலி ஹில் பே ஹூன் வஹான் பே ஜாயே ஆயே வஹான் பே தோ கஹனே லகே கி பாய் வோ ஐசா ஹை கி யஷ் ஜி கே பாஸ் மே ஜாதா ரஹா தோ ஐசே ஹி அபி வைதா ஜி நே கஹா ஹை கி ரமேஷ் கே சாத் மேனே காம் கியா ஹை தோ ஆப் மேரி பிக்சர் கர் லீஜியே மேனே கஹா பாய் மே யஷ் ஜி கி பிக்சர் கைசே கரூன் மே உன்கா சேலா
1: ஹூன்
0: தோ முஜே டைம் தீஜியே மே யஷ் ஜி சே பாத் கர்தா ஹூன் एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा फिर हम मिल लेते हैं जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा आपके लिए आसान हो जाएगा तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा उन्होंने कहा हाँ बेटा करो क्यों नहीं करो
1: ओहो
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे नहीं नहीं नहीं तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारे बैक पे हूँ फिक्र नहीं करो अभी मेरी जरूरत हो जाओ अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू क्या होगा अभी दिलीप कर लिए नहीं थे अभी हमने
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने
1: अच्छा
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ आप किसी से कहेंगे नहीं इनको बताइए मैं और सलीम साहब अलग हो रहे
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था वो इस तरह कि एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ रमन कुमार डायरेक्टर थे
1: हाँ, वो
0: रमन मेरे इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें
1: और जावेद साहब
0: गाने लिख रहे थे उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे

0: होगी।
1: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप जी आ जाते थे बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
2: जी,
1: बसेरा में असिस्टेंट थी।
2: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी। हाँ,
1: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए, उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
2: अच्छा।
1: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
2: जी जी।
1: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो का बाकी देख लेंगे चीज़ें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
2: दोस्ताना
1: ज्यादा, वो उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला, जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
2: दुश्मनी,
1: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
2: जी जी।
1: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला जिसलिए उन्होंने, देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे, तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
2: जी जी जी।
1: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है, जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
2: हाँ हाँ।
1: बोला हाँ लूँगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूँगा अगर चाहिए हो तो। आप मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब साहब। उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
2: अरे बाप रे,
1: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
2: हाँ, इसलिए
1: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
2: हाँ हाँ हाँ।
1: तो हो गया, बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
2: कहानी नहीं है,
1: कहानी नहीं है।
2: बाबा
1: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
2: दिलीप कुमार
1: साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लो, मान गए, यश जोहर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोहर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे, समंदर के किनारे
2: कहानी ढूंढ रहे हैं,
1: कहानी ढूंढ रहे हैं, क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो उसका ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग गए।
2: हाँ हाँ।
1: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
2: हाँ।
1: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं उनको एज ए राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
2: सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया। जी
1: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं तभी पिक्चर बनाते वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वो वाली
2: शक्ति
1: नहीं शक्ति नहीं इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था
2: मशाल
1: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था
2: यश जी ने डायरेक्ट की वो
1: और वो मैंने ओके किया मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
2: जी
1: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
2: तो मैंने ओके किया
1: मैं नहीं बोल सकता था।
2: जी
1: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब का।
2: जी
1: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: तो उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया, थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी सॉरी, शेखर कपूर, नामों में आजकल मुझसे गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से, जावेद साहब लिखने वहाँ चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहाँ से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने, तो ये

0: हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ इतने, जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 24 सीन तो पूरे क्लियर थे उस तरह सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक आध सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा तो मैं 10 बजे सेट पे ला करूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो 13 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुकर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुक्कर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो जश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश भल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे, उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी, जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
0: प्रदीप को लेके,
1: लेकिन वो नहीं बन पा रही, लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे, तो भाई उनको वो तो डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
0: दिलीप साहब को बता दी। ओहो हो, गजब।
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी हो वहाँ के थे पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो यारा यार के बदले यारा।
0: अच्छा,
1: यारा
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
1: सागर यारा
0: किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूँगा, उसमें बैठूँगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
0: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट, श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है, और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म है, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी, और डेटे पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली, और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचते हैं। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहाँ आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बातें,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों, चावला साहब ओके? बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ, ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है। तो रामनाड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए।
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
0: अटक गया,
1: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी,
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज़्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी,
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे,
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ,
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी,
1: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सरकमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद
1: लोग देखते हैं, नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतने हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल, और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा, मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग, ओके जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए।

0: कि ये विजुअल लो आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
1: जी जी जी
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों के।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: मिश्रित संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ऐसे कुछ गीत जो मिले जुले होते हैं, कुछ भजन, कुछ कव्वाली, कुछ पॉप सॉन्ग्स, इस तरह के अलग अलग गीतों का ये मिला जुला रूप है। तो लीजिए, विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग और मैं हूँ आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुनीता राव के गाए इस गीत का के साथ, जिसे लिखा है श्याम अनुरागी ने। सुनीता राव ने इसका संगीत बनाया है और एल्बम का नाम है चमके भिजुरिया।

और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना इस एल्बम का ये गीत अभिजीत की आवाज में। नुसरत बदर ने इसे लिखा है, सप्तर्षि का संगीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

देखा है तेरी आंखों को इस एल्बम का गीत सुनिए, आवाज और रचना साधु की। इस गीत को संगीत से सजाया है ललित ने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं तन्हा दिल इस एल्बम का गीत, शान की आवाज, शान की रचना और संगीत राम संपत का।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में शामिल होने के लिए आज गुजरात के प्रभास पाटन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में $100 से अधिक बनी हुई है।
2: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन समिति COP 31 की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे, जबकि चालक मंडी जिले का

0: रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। फुटबॉल में एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम कुछ खास करने वाले हैं। क्या होगा वो खास, चलिए आपको बताते हैं। प्रौद्योगिकी, यानी कि आज जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। प्रौद्योगिकी ने हमारी जिंदगी को नए रंग और नई रफ्तार दी है। रेडियो की कहीं मधुर आवाज है तो कहीं मोबाइल की दुनिया, टीवी की चमक है कहीं तो कहीं सेल्फी का नया अंदाज है। तकनीक अब हर रिश्ते और हर एहसास का हिस्सा बन चुकी है। प्रौद्योगिकी दिवस पर सुनिए कुछ ऐसे ही गीत जिनमें इन आधुनिक शब्दों की दिलचस्प झलक सुनाई देगी। तो चलिए आगाज करते हैं पुराने समय से, फिर धीरे धीरे लौटेंगे नए समय तक। तो दीजिए सुनवाते हैं आपको पतंगा फिल्म का गीत। शमशाद बेगम और चित्तालकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे हैं, सी रामचंद्र का धुन, और इस फिल्म का नाम पतंगा।
2: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा धुन। मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, समीर की रचना है, लीजिए सुनिए ये गीत।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैक्स टच। छह यार।

It's alright. It's alright. It's alright.

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। चलिए अब अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म रोबोट से। इस गीत को गाया है राग्स योगी बी, मधुश्री, तन्वी शाह और कीर्ति सगाठिया ने। स्वानन किरकिरे के बोल हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

सनम तेरी कसम। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, ड्रीम गर्ल। इस फिल्म से जॉनिटा गांधी और मीत ब्रोस की आवाजें हैं। इस गीत को संगीत से सजाया है मीत ब्रोस।

0: और अब आपको सुनवाते हैं साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कौसर मुनीर ने, हिमेश रेशमिया, कीर्ति सगाठिया और पलक मुछाल की आवाजें हैं। फिल्म का नाम जय हो।
1: चक लचक मचक चाल चलत जा।
2: ए छोरा गांडा थई गया।

0: ये जवानी है दीवानी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

करण सहंबी की आवाज़ में सुनिए लुका छुपी फिल्म का ये गीत। निर्माण ने इसकी रचना की है और धुन बनाई है तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुब्रत सिन्हा का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, आवाज और धुन हिमेश रेशमिया की, फिल्म का नाम रेडियो।

विशाल ददलानी और नक्श अजीज और प्रीतम की आवाजों में सुनिए, बोल है मयूरपुरी के प्रीतम की धुन, फिल्म का नाम बजरंगी भाईजान।

प्रौद्योगिकी दिवस के इस खास संगीतमय सफर में बस इतना ही। रेडियो, मोबाइल, टीवी और सेल्फी जैसे आधुनिक रंगों से सजे इन गीतों ने उम्मीद है आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। फिर मुलाकात होगी नए अंदाज और नए गीतों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर आज आप तय कर रहे हैं नेहा आगरकर देसाई के साथ। स्वीकार करें नमस्कार। साथियों, इबारत तो आपने पढ़ ही ली होगी। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। यदि कोई ऐसे श्रोता हैं जो फेसबुक पर नहीं हैं और उन्हें आज की हमारी इबारत नहीं पता है, तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। अच्छा, एक बात पहले और बता दूं कि इबारत जिन लोगों ने पढ़ी भी है और कमेंट्स किए भी हैं, उनमें लगभग सारे शब्द आ गए हैं, लेकिन एक शब्द है जो नहीं आया है अभी तक। एक नहीं बल्कि दो ऐसे शब्द हैं। तो एक बार ज़रा इबारत को ध्यान से पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक। हो सकता है कि जिसे आप शब्द ना समझ रहे हो वो शब्द हो। इसमें कोई भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, नाम, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से पहचानना है आपको और एक बार मैं पढ़ देती हूं ये इबारत आपके लिए। सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहाँ होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरते हैं, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैंने जोर दिया है थोड़ी सी हिंट देने के लिए, ताकि जिन शब्दों को अभी आपने नहीं लिया है उन शब्दों को भी आप सोच सकें और महसूस कर सकें और जान सकें कि वो शब्द कौन सा हो सकता है। वैसे तो एक गीत था जो शुरू में मैंने लगाया था, मगर जब मैंने देखा कि वो शब्द तो अभी तक आया ही नहीं है, तो सोचा एक हिंट दे दी जाए और तब तक कोई दूसरा गीत सुनवाया जाए। और बिल्कुल आप लोगों ने जो दूसरा गीत है वो सही पहचाना है। लीजिए सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। सफर, जी हाँ, यही शब्द है जो इस गीत में सुनने को मिलेगा।
1: एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर।

तो रुझान आना शुरू हो गए हैं, मगर हम थोड़ा और इंतजार करेंगे ताकि हमारे सभी श्रोता इन जो जो जो दो सवाल दो शब्द जो बाकी हैं उनका अंदाज़ा लगाकर हमें कमेंट कर सकें। एक साथी ने लिखा है, सभी श्रोताओं को प्रणाम। सुरीला सफ़र के लिए पूरा समय विविध भारती दे रही है, ये एक अच्छी बात है। हम इबारत को बार बार पढ़ सकते हैं और सोचने समझने का पर्याप्त समय है कि हमारी पसंद कुछ न कुछ टैली कर ही जाए। जी हाँ, कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं कि आज तो इबारत बहुत ही जल्दी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट को जल्दी करने की पीछे वजह यही होती है। अगर जल्दी पोस्ट आ जाती है तो उसका यही कारण है कि हमारे श्रोताओं को आराम से समय मिल सके। सुबह की भाग दौड़ होती है, तो अगर सुबह के काम करने के बाद जब बीच में थोड़ा समय मिले तो आप उस पोस्ट से इबारत को पढ़कर और फिर अपने शब्दों का अंदाज़ा लगा सके। देखिए, मजाक भी करते हैं हमारे साथी। एक साथी ने लिखा है, सुरीला सफ़र की पोस्ट रात 12 बजे तक नहीं थी, फिर आधी रात को आई। उत्सव फिल्म की तरह मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। क्या बात है, आप भी मज़े ले रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, चलिए अगला भी जो शब्द है काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये गीत है परिचय फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: चलिए, एक शब्द का कयास तो आप लोगों ने लगा लिया है, बिल्कुल सही सही, और वो शब्द है चलिए एक बार इबारत को फिर से पढ़ देती हूँ ताकि दूसरे शब्द का अंदाजा लगाने में भी आपको आसानी रहे। तो इबारत है, सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहां होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ, अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। चलिए देखते हैं आप दूसरे शब्द का अंदाजा लगा पाते हैं या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तो और तब तक चलिए आपको सुनवाते हैं गीत। देखिए, बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि जो दूसरा शब्द है वो हमिंग वर्ड हो सकता है। किसी ने लिखा है, मैंने शब्द से शुरू होने वाला गाना लिखा है, हम तेरे बिना जी ना सकेंगे। किसी ने लिखा है, आज शायद हमिंग से कोई भी गाना सुनाया जा सकता है, हमिंग वाला दीवाना हुआ बादल, कह दो कह दो। इस तरह के कई सारे गीत इन्होंने हमिंग वाले लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है, जो गीत सच में बिल्कुल सही निकला है। लीजिए आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की का संगीत।
1: हसीना से
0: तो सही पहचाना है आपने, बिल्कुल यही है वो गीत।

पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

जिंदगी के इस शोर शराबे में सुरीला सफर महज आवाजों का मेल नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। हमारा मन उस बहती नदी की तरह है जिसे किनारों की बंदिशें रोक नहीं सकती। ये तो अपनी ही धुन में कभी यादों के भंवर में उतरता है तो कभी सुकून के साहिल को छूता है। जैसे नदियां आजाद होकर सागर की ओर बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही आप भी नेहा के साथ अपनी कल्पनाओं की कश्ती को तैयार कर लीजिए। चलिए आज एहसासों की लहर पर सवार होकर रूह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां सिर्फ सुकून और सुरों का बसेरा है। ये कमेंट हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, आज का सुरीला सफर की पोस्ट बिटिया नेहा बड़ा मन बनाकर लेकर आई है, वो भी निर्धारित समय से कई घंटों पहले, क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके। हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये विषय से जुड़े गीत, ये प्रसारण तरंगे हमारे दिल को चुराए, हमको लुभाए। मन कहें क्यों न मैं गाऊं, क्यों न मैं जुड़ जाऊं सभी मित्रों को, और मेरे लिए भी इन्होंने लिखा है, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो अगला गीत है उसके बोल, मतलब वही जो शब्द आपने पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना है, शब्द है मन, और ये गीत भी कई लोगों ने सही पहचाना है। सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़।

मन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, मन प्रसन्न हो तो छोटी सी बात भी खुशी दे जाती है, लेकिन जब मन उदास हो तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन थक जाए तो थोड़ी शांति, थोड़ा संगीत, कुछ अपनों का साथ, खुद से बातचीत बहुत सुकून देती है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क को साथ लेकर इंटरनेट से भी ज्यादा तेज दौड़ लगाता है, जिसके लिए ये पूरा ग्लोब भी छोटा है। मन की दौड़ का कोई अंत नहीं। बहरहाल आज भी नेहा जी के साथ सुरीला सफर सुहाना ही होगा। जी हाँ, तो मन की जो दौड़ है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आंखें मीचिए और सोचिए किसी दूसरे ग्रह के बारे में, तो आप बस वहीं पहुंच जाते हैं। तो मन को कहीं भी जाने के लिए बस पलक झपकने का समय लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, अगला गीत और अगला शब्द भी जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है बंधन। तो सुनिए इस गीत को, करण अर्जुन फिल्म से, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़ें हैं, इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। और आप बताइए, बंधन में होना कैसा लगता है? बंधन किसी भी तरह का हो सकता है, वो बंधन अच्छा भी बुरा भी। आप क्या समझते हैं बंधन से और आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो हमने बात की थी बंधन की। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अर्थ ये कोई जंजीर, डोर या प्रतिज्ञा हो सकती है। आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ में ये वो विवशता है जो इंसान को किसी परिस्थिति में रहने को मजबूर करती है। भावनात्मक संबंध या दोस्तों परिवार के बीच घनिष्ठ प्रेम और रिश्ते को भी ये दर्शाता है। एक साथी ने लिखा है कि बंधन एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की गहराई मानवीय भावनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और आध्यात्मिक चेतना तक फैली हुई है। साधारण शब्दों में कहें तो बंधन का अर्थ जुड़ाव या बंधना, लेकिन ये जुड़ाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बंधन स्वयं में बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे बंधे हैं। प्रेम का बंधन हृदय को विस्तार देता है, जबकि स्वार्थ का बंधन व्यक्ति को संकुचित कर देता है। एक साथी ने लिखा है, आपने बंधन का पूछा, तो बंधन अगर प्यार, विश्वास और अपनेपन के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंधन में हर कोई बंधना चाहेगा और बांधना भी चाहेगा, लेकिन बंधन अगर जबरदस्ती थोपे गए हो, जिम डर हो, एक अनिच्छ हो, वो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं, इतने कठोर, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंधों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंधों के, नहीं देखिए अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे। तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंधन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वहां से कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना सकें, क्योंकि ऐसे बंधन हमेशा तकलीफ ही देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने कहा कि बंधन प्रेम का हो तो अच्छा लगता है। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शब्द पंछी।

0: लोग देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोक झोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं है। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज़्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हों तो जल्दी से निकल जाते हैं और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकलें तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सके।

सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे, और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है, आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन का संगीत।

तो कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी विशेषण, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तो से नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा। धन्यवाद इसे सुंदर कहने के।

लिए। फिर किसी ने लिखा है, मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड। तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूं। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए ये तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया।

0: था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छाँव में। गीत और संगीत किशोर कुमार का।
1: हाँ।

जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान

0: पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीरामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी

0: नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत G Ramji अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत

है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

KL परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज़ दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: असली नकली, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत, अब सुनिए शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, सबिता बैनर्जी और सीता की, फिल्म का नाम बाजे कुंकरू।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से, इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है, या आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही,
1: बिल्कुल
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं, गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: ठंडी रहती
2: है, तभी निकलती है। तो
1: बिल्कुल
2: हमसे जितना हो सके, हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गाँव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
2: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलिथीन वगैरह, प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहाँ डालते हैं वहाँ डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखिए क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर
1: दी,
2: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
2: नहीं नहीं,
1: है ना, तो ये गलत बात है ना,
2: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह है? तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था,
1: जी
0: और वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं।
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना ऐसे, जब
0: बिल्कुल
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो,
0: नाच ही लो। तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।

0: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे, वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद ना होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया, कितना ही उबालो न कहीं मलाई का पता न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था, शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो, आठ आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा, आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है इतना खराब दूध, ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता, वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती, क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना, रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे, ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती, या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं, मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी, और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया, मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया, गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है, उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर

0: उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
1: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही ब्याई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
0: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा, जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दो पाता था। लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
1: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
0: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार 1-2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था, लेकिन ये तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे, कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है, जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद

0: किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी, उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई, आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
1: बाबूजी इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांदी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
2: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई, सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है, यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे अपने घर के होंगे। देखो बाबू अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था, जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही, और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
3: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे, और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासन पूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
3: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने, गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है, उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
0: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
4: अरे साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
0: मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
4: देखिए मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
0: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
1: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह। जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
1: ये पत्तियां कहाँ रख जाऊं?
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठाकर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
1: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
5: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
6: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार अंत में, जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं, ये सोच कर कि ये आसान होगा। परिणाम, बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है, जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर भेजिए इन्होंने।
7: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु है जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है, यहाँ से लिखा इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
0: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था
1: जी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीकी है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं, तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के दिवस मनाया जाता है। और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज़्यादा मित्र करीब, क्या वजह है? तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आज़ादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुँच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या है जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते
0: जी
1: हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहाँ एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है, आप खुले खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने
0: बिल्कुल
1: देखा है अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो
0: जी,
1: सहेलियां थीं, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
0: उनकी
1: और
0: डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे,
1: हाँ
0: और रूठना मनाना तो चलता था।
1: चलता ही
0: लेकिन
1: था।
0: रिश्तों में क्या होता है, जब वो कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में
1: हाँ
0: भी खटास
1: तो
0: आती है,
1: आती
0: लेकिन
1: है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं समझती
0: हाँ
1: हूँ अगर दोस्ती में खटास आती है तो
0: जी
1: कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब
0: बिल्कुल
1: दोस्ती में खटास आती है, वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्त ही रहते हैं।
0: दोस्ती रहती है,
1: जहाँ दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ या
0: स्वार्थ उनके
1: मन में कुछ
0: अंदर।
1: था।
0: बिल्कुल सही
1: वरना
0: बात
1: आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम
0: जी,
1: बात करती हो ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल। सौ की सीधी एक बात कि
1: हाँ
0: आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
1: तो आप
0: अहंकार
1: नहीं
0: है,
1: निभा
0: तो आप
1: पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा
1: नहीं निभा
0: पाएंगे, है ना।
1: पाओगे।
0: तो हमारे
1: दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है
0: बहुत
1: मंजरी,
0: बड़ा है
1: मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते,
0: जी,
1: जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं।
0: आ गई जी,
1: लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया, तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है। और बहुत अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है, जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने पुराने कहाँ गए कहाँ
1: हाँ, सही बात है। कुछ मित्रों
0: गए,
1: ने हमें खोज लिया, अरे आप
0: है
1: कहाँ रहती हैं, आप
0: ना।
1: वही मंदाकिनी है
0: हमने
1: जो
0: खुद ही
1: कभी साथ
0: दो
1: पढ़ा करती थी,
0: जी
1: तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: वो
0: बात
1: एक
0: है,
1: बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ
0: बिल्कुल
1: उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है।
0: कुछ भी नहीं। अगर
1: तो
0: वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ
1: हाँ
0: लीजिए आपने सब कुछ समझ
1: समझ लिया,
0: लिया।
1: तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाएं तो समझ
0: बहुत
1: लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना।
0: जी जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधनकारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज़्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज़्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं, बिना शर्त स्वीकृति के दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं, परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिसे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है। जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार होता है, इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: तो हाँ तो मंजरी बताइए,
1: हमारे
0: दोस्ती में और क्या क्या होता है?
1: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं, है ना।
0: मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते हैं?
1: भाई देखते
0: मुझे
1: हैं,
0: तो लगता है दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं है।
1: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते हैं।
0: मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
1: देखती हूँ, चलिए ठीक है, कर लेंगे।
0: हाँ।
1: और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह? मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों ही, दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है, जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
0: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहाँ वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर,
0: बिल्कुल सही। और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता है।
1: जी,
0: है ना,
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग सुनते हैं,
0: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तो मंजरी भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें, कि दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है। तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठ कर खाते हैं तो कितना मजा आता है ना।
1: जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे, दाल पीठा और सत्तू का शरबत।
0: जी,
1: तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, हम उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है, लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगोकर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा, और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना, क्या
1: लिखते
0: कह रही
1: हैं कि सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का जौ होता है, जिसे लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो हमें पता चल गया कि हम
0: दोनों में क्या फर्क होता है।
1: हाँ,
0: जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है, कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात यानी आप इतने से ही निकल ली
0: तो अगली बार, आप मेरी अच्छी दोस्त है ना
1: जी,
0: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली है। ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: जाना।
1: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
1: प्यार भरा
2: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय

नमस्कार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का आप लोग केंद्र है। दोस्तों, इस समय स्टूडियो के घर में शाम के 6:20 हो चुके हैं। स्टूडियो से मैं आपका दोस्त कृष्ण प्रसाद जोशी सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आइए अब शुरू करते हैं आज की दूसरी सभा। दोस्तों, सभा शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:05 से आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत। सबसे पहले मार कार्यक्रम में आज कुछ महाराधुनिक गीत वनलाल रोत खवुंग और उनके साथियों के आवाज़ में।

जेमी कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे कुछ जेमी भक्ति गीत। गायक कलाकार होंगे हुंगराइले न्यूमे और उनके साथी। समय रहेगा 6:25 का।

और रात के 9:30 से लेकर सवा के अंत तक यानी कि रात के 10 बजे तक आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का अवलोकन केंद्र है। दोस्तों इस समय स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6:05 हो चुके हैं। आइए अब सभा को आरंभ करते हैं और सुनते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले मार कार्यक्रम में आज कुछ मार आधुनिक गीत भल्लाल रोत खोबोंग और उनके साथियों के आवाज़ में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भानलाल रथ खबुंग और उनके साथियों के गाए कुछ महाराधुनी गीत। इसी के साथ ही आज का मार कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आफलोम केंद्र है। दोस्तों, आइए आप सुनते हैं जेमी कार्यक्रम में आज कुछ जेमी भक्ति गीत हुंगाई लेजम न्योमे और उनके साथियों के आवाज़ में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हुंगराई लेने में और उनके साथियों के गाए कुछ जेमी भक्ति गीत। इसी के साथ ही आज का जेमी कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलुंग केंद्र है। दोस्तों, इस समय स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6:45 होने ही वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए गए संध्या आंचलिक बातोरी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हरेंद्र फुंगलो और उनके साथियों के गाए कुछ डिमासा लोकगीत। इसी के साथ ही आज का डिमासा कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं कार्बी कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ कार्बी आधुनिक गीत काजीरंगी पी और उनके साथियों के आवाज़ में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे काजीरंगी पी और उनके साथियों के गाए कुछ कार्बी आधुनिक गीत। इसी के साथ ही आज का कार्बी कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, आइए आप सुनते हैं कुकी कार्यक्रम में आज कुछ कुकी आधुनिक गीत हेंगाओ संग चोंगलो यार उनके साथियों के आवाज़ में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंगाओ संग चोंगलो और उनके साथियों के गाए कुछ कुकी आधुनिक गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है आज का कुकी कार्यक्रम और साथ ही समाप्त होते हैं आज के इस सब के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आपलोग केंद्र है। दोस्तों, इस समय इस जगह घड़ी में रात के 8 बज चुके हैं। आइए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक।

दोस्तों आपने ट्यून किया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र, और अभी आप सुन रहे हैं कुछ वेस्टर्न म्यूजिक।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ वेस्टर्न म्यूजिक। इसी के साथ ही समाप्त होता है आज का वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, और सबसे पहले सुनते हैं जुर्म फिल्म से यह गाना। कुमार सानू और साधना सरगम के आवाज़ में, संगीतकार है राजेश रोशन, और इस गीत को लिखा है इंदिवर ने।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के आवाज़ में। दिल का रिश्ता फिल्म से संगीतकार है नदीम श्रवण और गीतकार है समीर।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं बेमिसाल फिल्म से किशोर कुमार के आवाज़ में। संगीतकार है आर डी बर्मन और गीतकार है आनंद बख्शी।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलुंग केंद्र है। दोस्तों, इस समय स्टूडियो घड़ी में 8:45 होने ही वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय

0: 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का

0: प्रावधान किया गया है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे, आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में

0: के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या रिले के गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर व्हाट्सएप करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, आज दिन है सोमवार। हर सोमवार रात के 9 बजे हम आपको सुनाते हैं असमीज गीतों का कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ असमीज फिल्मी गीत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हफलुम केंद्र, और अभी आप सुन रहे हैं असमिस गीतों का कार्यक्रम में आज कुछ असमिस फिल्मी गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ असमिस फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। में इसी के साथ ही समाप्त होता है आज का असमिस गीतों का कार्यक्रम।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अफलुंग केंद्र है। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं इस सभा के अंतिम कार्यक्रम यानी कि फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। और सबसे पहले सुनते हैं कयामत से कयामत तक फिल्म का यह गाना अलका याग्निक और उदित नारायण के आवाज़ में। संगीतकार है आनंद मिलन और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं, कुमार सानू और साधना सरगम के आवाज़ में, गोल्डन गन फिल्म से। संगीतकार है आनंद मिलन और गीतकार है समीर अंजान।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं, खुद्दार फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाज़ में। संगीतकार है राजेश रोशन और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हफलुंग केंद्र, और अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। आइए अगला गाना सुनते हैं विजयपथ फिल्म से। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में, संगीतकार है अनु मलिक और इस गीत को लिखा है जमीर काजमी ने।

दोस्तों आइए कार्यक्रम का अंतिम गाना सुनते हैं, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के आवाज़ में हीरो फिल्म से। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अफलुंग केंद्र है। दोस्तों, इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं। इसी के साथ ही आज की दूसरी सभा समाप्त होती है। कल सुबह पहली सभा में सुबह के 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि आपके दोस्त कृष्ण प्रसाद जोशी को दीजिए इजाज़त। शुभरात्रि। जय हिंद।